0: फाइनेंस में इंजीनियरिंग करें।
1: वॉइस
0: गैरी स्टीवन्स है इंस्पेक्टर कौन पार्टनर ऐसा कि जिसे के साथ लिस्ट होकर निकालने देखी।
1: Thank you, Rob. Bye-bye.
0: Thank you.